جنگ دے میدان دے اندر ظلم دے نال ٹکرا لینا. श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह कहंदे मेरा बामन दा पुत्र तां मैं है नहीं, छत्री कपूत हो बामन को नह, बामन दा पुत्र नहीं है कि मैं वेद पढ़ा, मैं शास्त्र करा, मैं हवन पढ़ा. हिंदुस्तान ते गुलामी विच है, भारत दे गल विच तां गुलामी पई हुई है, तो मैं होम जग करा, मैं पुराण पढ़ा, मैं वेद पढ़ा. धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह ने बाणी दे अंदर जिक्र किया, कहिंदे जदों बाबर ने हल्ला किया ना, बाबर ने हल्ला या पीर सुनिया या मीर सुनिया ताया, पता लगा कि बाबर आ गया हमला करन, ते कहिंदे ए हमन परन लग वेद दियां पुराना दियां सलोक ते श्रुतियां गाण लग पाए. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਪ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੋੜੇ ਹਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਹਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੱਗ ਬਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅੰਧਾ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ. बाबर ने ऐसा हल्ला किया, तबाह करके रख दिता, बर्बाद करके रख दिता, कोई मुगल ना हुआ अंधा, किने ना परचा लाया, मुगल पठाना भई लड़ाई, रण में तेग वगाई, उन्नी तुपकतान चलाई, उन्नी हस्त चढ़ाई, मुकाबला किथे. आ पातशाह कहंदे हुण मैं क्षत्री कर्म जिहड़ा है वह करना, कि मैं वेद पढ़ा, तप करा, पुठा लटका, कि जरवाणिया ने ते घेर लिया भारत नू, हिंदुस्तान नू, ते हुण योधियां दी लोड़ है, योधा सूर वीर बहादुर वो जिहड़ा जंग दे मैदान दे अंदर नितर के आवे टकरा कर, छत्री को पूत हो बामन को नह, के तप आवत हो जो करो, और जंझार जितो ग्रह को तो त्याग कहा, चित्ता में तरो अवरीज के देव है, हमको जो हम विनती कर जोर करो, जब आपकी औदन धान बने अत ही रण में तब जूझ मरो. अज उस खिते दी याद मना रहे, चाहिए तो सारे भारत विच सी, क्योंकि भारत नू आजाद कराया गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, चार साहबजादिया ने ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ. ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ

द्वारी गावन तुदन चित गुपत लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदन ईसर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदन इंदर इंदरासन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती सं

काले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माश पायाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खांड

तपोत भूखै खाए चली यह दुख, सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहेब सच नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वडियाई, आख थके कीमत नहीं पाई,

अगम अपारा सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर।

सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन युग मैं सुखवासी। से मुकत भए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करे हर पूजा जी।

तित सरवरड़ पहिले निवासा पाणी पावक तिन है किया पंकज मोह पाग नहीं जाले हम देखा तह डूबी अले

श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा।

किया। आप हाथ दय मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तो जजू करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दशो कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कार विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जछन उपजायो। आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा।

काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चिटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा धारत तब देहे अपारा। जब अकरख करत हो कबहू, तुम मैं मिलत देहे धार सब हूँ।

भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको पेव न पावत भेदा।

अनूप सरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी ओत पुज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो संक्र इकैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबारो असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हवा मरे पुरख जवन।

आलो निकट नह आय है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके पाप तनक मुहर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा।

दुष्ट दुख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज से ती मन वजिया वादाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्दोता गावह हरि केरा मन जिने वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा

तेरा घर ता तेरा सब किशो है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर तारिया पंच दूत तुद वासो कीते काल कंटुक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रो

साध जना कै संग भव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बेदारियन। किस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। किस सा

0: कर लिया।
1: एक मिनट गल सुनो, बेस बहुत ज्यादा है, बेस बहुत ज्यादा है, थोड़ी कट करो। हाँ ट्रिप नहीं, पिछों करो प्लीज। ओके okay।

प्यारी सात संगत जी, गुरु महाराज जी ने बेअंत बख्शिशा कीतिया हन। अमृतपल तो एक जूम मीटिंग विच संगत करके गुरु महाराज ने ऐसी बख्शिश की कि हुण जदों कीर्तन की सेवा प्राप्त हुई तो दास जी मन विच आया, गुरु महाराज ने आप प्रेरणा बख्शी कि बेअंत बेअंत वाहिगुरु दे भगत जन उस दे गुणा दा गायन गा रहे कर रहे हैं, कि क्यों ना उन्हां शब्दां दा ही गायन होवे कीर्तन होवे। तो सतगुरु जी ने मेहर कीती, सवेर नूं जपजी साहिब दा पाठ इत्थे हुंदा है तां वी सोदर विच सतगुरु जी ने बेअंत उन्हां दा जिक्र कीता है जिहड़े गा रहे हैं। गावन तुदनों पवन पाणी वैसंतर, शाम नूं फिर रासा विच फिर पढ़दे आ। पर कमाल की गल की गुरु साहब कहते ने होर केते तुदनों गावन, मैं इन्हां दा जिक्र किया, इन्नी लंबी लिस्ट दिती गुरु नानक देव महाराज जी ने। इस वक्त गुरु ग्रंथ साहब च तीन बारी आया है, जिन्होंने सहज पाठ करते हैं अखंड पाठ करते हैं उन्होंने पता है तीनों बारी थोड़ा थोड़ा फर्क है। सो असी हुण राज साहब के पाठ विचों पांच तुकां का कीर्तन करांगे, पांच तुकां का जिन्हां विच गुरु साहब ने कर दिया। उत्थे पहुंच के कहते होर केते तुदनों गावन, होर पता नहीं कितने लोग तैनू गा रहे ने उसे मैं चित्र ना आवन। कहते मैं मेरे चेते च नहीं हैं, मैं नहीं पता, पता ही नहीं मैं, कहते मेरे चेते च नहीं हैं। होर किते तुदनों गावन से मैं चित ना आवन, नानक क्या विचारे, विचारन नानक की विचार कर सकता है। वाहिगुरु तेरे गुणा का तू ही जानता है, तू बेअंत है, बेअंत है ऐसा साचा। आओ गुरु माज कृपा कर, असी गाते हाँ उसकी उस्तत पढ़ते हाँ, कथा सुनते हाँ, विचार करते हाँ, पर प्रभु दे गुणा नू मूँह तो बोलना गाउना सुनना करना नाल वखरी चीज है। अंदर वसा लेना गुणा नू, ओ पागां वालियां नू चीज प्राप्त हुंदी है। सतगुरु जी कहंदे ने सही तुद नू गावन जो तुद पावन। दरअसल रियलिटी ए है कि ओ ही तेरे गुण गांदे ने। सही तुद नू गावन जो तुद पावन, जेड़े तेनू चंगे लगदे ने, जिहड़े गुण गा रहे ने किसी होर मनोरथ दे नाल, उन्हां दा स्वार्थ कुछ होर है। सतगुरु जी कहंदे ओ पता नहीं तेरे दर ते परवान हैन के नहीं, पर सही तुद नू गावन जो तुद पावन, जदों तैनू चंगे लग गए। पर चंगे किहड़े लगदे ने, रत्ते तेरे भगत रसाले, रत्ते तेरे भगत रसाले। आओ रल के इस तुक दा आनंद माणिए, फिर पांच तुकां दा कीर्तन होर नाल होर गुरु महाराज कृपा करन शब्दां दा।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਛੰਤ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਛੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ 687 ਅਤੇ 88 ਉੱਪਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਗਮਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ, ਸੱਚਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਵਾਜਨ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਦ ਗੁਰੇ ਨਮ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਏ ਨਮ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹਿ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਿਮਰੋਂ ਜਾਸ ਵਿਸੰਬਰ ਇਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤਾ ਗੰਥਨ ਇਕੈ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਦਾਖਿਅਰ, ਕਿਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਕ ਆਖਿਅਰ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ, ਕਾਂ ਕਿ ਇਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੂ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਟਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਗਨ ਨ ਲਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਣਦਿਨ ਜਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨ ਸੰਤਾਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਉ ਨਿੱਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ।
प्रभु कै सिमरन होए सो भला प्रभु कै सिमरन सो फल फला से सिमरै जिनि आप सिमराए नानक ता कै लागू पाए प्रभु का सिमरन सब ते उच्चा प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभु कै सिमरन सब किछ सुझै प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहि समाए प्रभु जी बसै साध की रसना नानक जन का दर्शन दसना प्रभु को सिमरै से तनवंते प्रभु को सिमरै से पतवंते प्रभु को सिमरै से जन परवान प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरै से बेमोहताजे प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे प्रभु को सिमरै से सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगर वाला प्रभु को सिमरै से पर उपकारी प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरै तिन आनंद कनेरे प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे संत कृपा ते अंधिन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभु कै सिमरन कारज पूरे प्रभु कै सिमरन कबहु ना झूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सह समानी प्रभु कै सिमरन ने चलया सन प्रभु कै सिमरन कमल भेगा सन प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभु सिमरन कांत न पार सिमरह से जन जिन को प्रमया नानक तिन जन सरनी पाया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद उपाए हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीचों कुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बजाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रसाद वस्तपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाय जय महाप्यान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जय मुश्किल हो वैत पारी हर को नाम किन माहे उदारी अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कूट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख गनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनिक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जपत आघावै जे मार गयो जात केला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याइयै नानक गुरमुख परम गत पाइयै छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तै पार पराही अनिक बिगन जय आई सिंगार है हर का नाम तत्काल उदार है अनिक जोन जन मैं मर जा नाम जपत पावै विश्राम हो मैला मलकबू न तो वै हर का नाम कूट पाव कुवै ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाई है साध कै संग जे मार के गने जाहि न कोसा हर का नाम उहा संग तोसा जे पै डै मांद गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहा पंथ तेरा को न सियानू हर का नाम तह नाल पछानू जय महाप्यान तपत वो काम तय हर के नाम की तुम परछा या त्रिका मन तुझ आकर खै तह नानक हर हर अमृत बरखै भगत जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उतरे जनकूट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध कुमात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग कै नानक जन कै बिरत विवेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत
कब परै न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाही बियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन कै माल खजीना हर धन जन कुआ प्रभ दीना हर हर जन कै उठ सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी पोत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जात्यो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लत्था नाम की महिमा संतरित वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग वड भागी पाई है संत की सेवा नाम त्याई है नाम तुल कछ अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सुगल त्याग वन मध्य प्रिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुण्य दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कराती व्रत नेम करे बहु पाती नहीं तोल राम नाम विचार नान गुरमुख नाम जपिय एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवै महा उदास तपिसर थीवै अग्न माहि होमत प्राण कनिकसु है वर भूम दान न्यौली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजमत साधन निमक निमक कर शरीर कटावे ताओ पी हो मैं न जावे हर के नाम समसर कछ नाही नान गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीरथ दे छुट्टै गर्भ गुमान मन ते हुट्टै सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबू न बिखिया टरे जल तू वै बहु देह अनीत शुद्ध का हुई काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहुमूच बहुत सियान जम का पौ व्यापै अनिक जतन कर त्रिशन त्रापै भेख अनेक गनी बुझै कूट पाव दरगैनी सिजै छूट सुनाही उपयाल ओहे व्यापह माया जाल अवर कर तू सगली जमडाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जप दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर ना हृदय सद गावै जे को अपनी शोभा लूरै साध संग हो मैं छूरै जे को जन मरण ते डरै साध जना की सरनी परै जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान वापस को जो जाने नीचा सो गणिय सब ते उच्चा जाका मनो सगल किरीना हर हर नाम चिन कट कट चीना मने अपने ते बुरा मिटाना पेके सगल सुस साजना सुख दुख जन समदृष्टिता नानक पाप नहीं लिपा निर्धन को तन तेरो नाओ निथावे को नाव तेरा थाओ निमाने कौ प्रभ तेरो मान सगल कटा को देवो दान करन करावन हार स्वामी सगल कटा की अंतर जामी अपनी गत मित जान हो आपे अपन संग आप प्रभराते तुमरे उस्त तुम ते हुए नानक वर न जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जासु सोन रसन बखानी सगल थान ते उत्तम था नानक जे घट वसै हर नाम श्लोक निर्गुण यार एने सो प्रभ सदा समाल जिन किया तिस चीत रख नानक निभही नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी
جن تو ساس وار سیگاریا گرب اگن مہجن اباریا بار ویوستا تجھے پیار ہے دودھ پر جو بن بھوجن سکھ سود برد پیاؤ پرساد سین مکھ پیاؤ بیٹھ کو دین ایہو نرگن گن کچھو نہ بوجھے بخش لے ہو تو نانک سی جے جے پرساد تارو پر سکھ بسے ست پرات میر بنتا سنگ ہسے جے پرساد پی وے شیتل جلا سکھ دائی پون پاو کملا جے پرساد بھوگے سبر سا سگل سمگری سگ ساتھ بسا دینی ہس پاو کرنی ترسنا تسے تیاگ اور سنگرچنا ایسے دو مڑند بیاپے نان کاڑ لے ہو پرویاپے آد انت جو رکھن ہار تسوں پریت نہ کرے گوار جا کی سیوا نو نت پاوے تاسو موڑا من نہیں لاوے جو ٹھاکر ست سدا ہجورے تاکو اندھا جانت دورے جا کی ٹہل پاوے درگہ مان تسے بسارے مگد اجان سدا سدا پولن ہار نانک رکھن ہار پار رتن تیا کوڈی سنگ رچے چھا چوٹ جھوٹ سنگ مچے جو چڑنا سو استر کرمانے جو ہوون سو دور پرانے چھوڑ جائے تس کا شرم کرے سنگ سہائی تس پر ہرے چند لے پتارے توئے گر دھب پریت پسم سنگ ہوئے اندھکوپ میں پتت بکرال نان کاڑ لہو پرب دیال کرتوت پسو کی مان سجات لوک بچارا کرے دن رات بار پہ گنتر مل مایا چھپ سناہیں کچھ کرے چھپایا بار گیان تھیانی سنانو انتر بیاپے لوب سوانو انتر اگن بار تن سوا گل پاتر کیسے ترے تھا جا کے انتر بسے پرویاپ نانک تیجن سہ سمات سون اندھا کیسے مارگ پاوے کر گہلے اوڑ نبھاوے کہاں بجارت بوجھے ڈورا نس کہی ہے تو سمجھے پورا کہاں بسن پد گاوے گنگ جتن کرے تو پی سر پنگ کہ پنگل پربت پر پون نہیں ہو تو ہاں اس گون کرتار کرونا میں دین بینتی کرے نانک تمری کرپا ترے سنگ سہائی سو آوے نہ چیت جو بیرائی تاسو پریت بلوا کے گرے پیتر بسے اند کیل مایا رنگ رسے دڑ کر مانے منہ پرتیت کال نیا وے موڑے چیت بیر ورود کام کرود موہ چوٹ بکار مہا لوب ترو ہویا ہو جگت بہانے کئی جنم نانک راکھ لہو اپن کر کرم تو ٹھاکر تم پہ ارداس جیو پنڈ سب تیری راس تم مات پتا ہم بارک تیری تمری کرپا میں سوکھ کنیری کوئی نہ جانے تمرا انت اچے تے اچا بھگوانت سگل سمگری تمرے سوتر تاری تم تے ہوئے سواگیا کاری تمری گات مت تم ہی جانی نانک دا سدا قربانی سلوک دین ہار پرب چھوڑ کے لاگے آن سوائے نانک کہو نہ سی جئی بن ناوے پت جائے اشٹ پدی دس وستو لے پاچھے پاوے ایک بست کارن بکھوٹ گواوے ایک پی نہ دے دس پی ہر لے تو موڑا کہو کہا کرے جس ٹھاکر سیو نہ ہی چارا تاکو کی جے سد نمسکارا جا کے من لاگا پرب میٹھا سرب سوکھتا ہوں من اوٹا جس جنے اپنا حکم منایا سرب تھوک نانک تن پایا گنت ساؤ اپنی دے راس کھات پیت برتن دولاس اپنی امان کچھ بہر ساؤ لے اگیانی من روس کرے اپنی پرتیت آپ ہی کھووے بہر اس کا وشواس نہ ہووے جس کی بستی سیا گہ رکھے پرب کی آگیا مان مت ہے اس تے چوگن کرے نہال نانک صاحب سدا دیال انک پانت مایا کے ہیت سر پر ہووت جان انیت بر کی چایا سیو رنگ لاوے او بن سہ او من پچھتاوے جو دیسے سو چلن ہار لپٹرے اتے اند اندھار بٹاؤ سیو جو لاوے نیہ تاکو ہاتھ نیا وے کی من ہر کے نام کی پری سکھ دائی کر کرپا نانک آپ لے لائی مِتھیا تن تن کٹمب سبایا مِتھیا ہومے ممتا مایا مِتھیا راجوبن تن مال مِتھیا کام کرود وکرال مِتھیا رت ہستی سبسترا مِتھیا رنگ سنگ مایا پیک ہستا مِتھیا ترو مو ابھیمان مِتھیا پسو پر کرت گمان
अस्थिर भक्त साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्व को हिर है। मिथ्या नित्र पेखित पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को तावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। मिथ्या तन्नी पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा। बिन बुझे मिथ्या सब पय सफल देह, नानक हर हर नाम ले। बिरथी सागत की यार जा, साच बिना कह होवत सूचा। बिरता नाम बिना तनंद, मुखावता कह दुर्गंध। बिन सिमरण दिन रैन बिरथा बिहाई, मेघ बिना ज्यो खेती जाए। गोविंद भजन बिन बृथे सब काम, ज्यो कृपन के निरार्थ धाम। धन धन तेजन जे कट बस्यो हर नाओ, नानक ताके बल बल जाओ। रहत अवर कछवर कमावत, मनि प्रीत मुखो गंडलावत। जन नहार प्रभु प्रवीन, बाहर भेख न काहू पीन। अवर उपदेश आप न करे, आवत जावत जन मैं मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक कुन जन चरण पराता। करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आप माने। आप है आप आप करत नबेरा, किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा। उपाव से अनुप सगल ते रहत, सब खचान तुम की रहत। जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर या सुनाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरी। श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिनस जाए अहंग मेव। नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जे प्रसाद छत्ती अमृत काहे, तिस ठाकुर कौ रख मन बाहे। जे प्रसाद सुगंध तन लावै, तिसको सिमरत परम गत पावै। जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसे त्याय सदा बने अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पैर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याय त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै, तिसे त्या कतवर लुभावै। जे प्रसाद सुख से सोई जय, मन आठ पैर ताका जस गावी जय। जे प्रसाद तु सब को माने, मुक्ता को जस रसन बुखाने। जे प्रसाद तिरु रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जप दर गै मन पावे, नानक पद से ती कर जावे। जी प्रसाद आरो कंचन देही, लिव लावो तिस राम सुनेही। जी प्रसाद तेरा उल्ला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत। जी प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताके। जे प्रसाद तुझको न पहुंचे, मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे। जे प्रसाद पाए दुर्लभ दे, नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद अपुखन पैरी जय, मन ते सिमरत क्यों वालस की जय। जे प्रसाद अश्वहस्त असवारी, मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलक तना, राख पुर प्रभु अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठ सत्य सहते आई। तिसहते आये जो कल कै, इहां उहां नानक तेरी रखै। जे प्रसाद करै पुन बहुदान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभु को साथ साथ चितारी। जे प्रसाद तेरे सुंदर रूप, सो प्रभु सिमरव सदा अनूप। जे प्रसाद तेरे निकी जात, सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत रहे, गुरु प्रसाद नानक जस कहे। जे प्रसाद सुने कर्ण नाद, जे प्रसाद पिकह बिस्मार। जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परम गत पाव है, जे प्रसाद सुख सह समाव है। ऐसा प्रभ त्यागवर कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तुम प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तुता को जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावै साच, रे मन मेरे तूता शिवराच। जे प्रसाद सबकी गत होए, नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभु सु प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मातु तम होए। सर्व निदान प्रभु तेरी माया, पू कछु न किन्हु लया।
ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਤਿਤ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਥ, ਨਾਨਕ ਇਨ ਕਹਿ ਕਛੂ ਨਾਥ। ਸਲੋਕ ਅਗਮਗਾਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੁਮੁਖਤਾ ਹੋਏ। ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ, ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਸੁਪਦੀ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮੁਖੂ ਜਿਲ ਹੋਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਕੋਤ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਵੇਰਾ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਸੁਮਾਨੀ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਈ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਕਤ ਹੁੰਤਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮੀਤ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੋ ਮਹਾਪੁਨੀਤ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸਿਓ ਨਿਹ ਬੈਰ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਭੀਗਾ ਪੈਰ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਨੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹੋ ਤਾਪ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਵਿਆਪ। ਆਪੇ ਜਾਨੇ ਸਾਧ ਬੜਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਿਆਈ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਕਬ ਹੁੰਤਾਵੈ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤਗ ਉਚਰ ਲਹਿ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਿ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਵਸੈ ਥਾਨ ਉਚੈ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਜੜੈ ਸਭ ਧਰਮੂ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ। ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਸੰਗ ਪਾਪ ਲਾਇਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਾਮੂ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਾਮੂ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਚਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕਲੂਕਤ ਹਰੈ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਈਆਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਚਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ। ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਵਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਸੈ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਮੰਤੇ ਵਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਬ੍ਰਹਮ ਮੀਠਾ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ। ਸਾਧਗੀ ਮਹਿਮਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਨ ਹੈ, ਜਿਤਾ ਸੁਣੈ ਤਿਤਾ ਬਕਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਧਗੀ ਉਪਮਾ ਤਿਉ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧਗੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ। ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ। ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਉਸਤੇ ਉੱਚੀ, ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਮੂਛ ਤੇ ਮੁੱਚੀ। ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੇਦ ਨ ਭਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ ਕਿਸ ਬਿਨ ਕੋਏ। ਨਾਨਕੇ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ। ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਵ ਕੋ ਸੋਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਦਿਰ ਸਮਾਨ। ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲਪਵਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਧੀਰਜੇਕ। ਜਿਉਂ ਵਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਓ। ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਨ ਲਾਗਿਆ ਜਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜੈਸੇ ਧਾਰੂ ਭਰਿਆ ਕਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਮਨੇ ਅਪਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਕਰੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕਿਰੀਨਾ, ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰ ਮਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਭਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਯੁਗਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਪਰਿਆਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਈ ਧਾਵਤ ਬੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਸੁਫਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ।
ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदारु, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसारु, ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधारु, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवारु, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खूजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाख्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व काठा कुरु, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, उरतारै जो अंतरनाम, सर्व में पेख भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक वो पर सगल निस्तार है, अष्टपदि मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रै रूप न पेख नेतर, साध की टैल संसंग हित, कर न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुरु प्रसाद विख्या पर हरे, मन की बास न मन ते टरे, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा परस, वैष्णु सो जिस ऊपर सुप्रसन्न, विष्णु की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हो वह नहीं कर्म, तिस वैष्णु का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपालु, आप जड़ै वह नाम जपावे, नानको वैष्णु परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मंति बिनस सगला परम, कर पूजय सगल पार ब्रह्म, सासु पापा मलक हुए, तिस भगवती की मत उत्तम हुए, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तने अर्प विष्ण प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म में शुद्ध है, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के अवधे जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो नयावे, वेद प्राण भूत सिमरत भूत जय मूल, सुखम मैं जाने अस्थूल, चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना में जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत हुए, सास पावे जिनको, एक कर कृपांतर उतारे, पस प्रेत मूत पात्र को उतारे, सर्व रोग का उखद नाम, कल्याण रू मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितए न पाइए धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जानु, सो दास दर गै परवानु, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी परे, सगल संगातमु दास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुख सो कहावै, तैसा हरख तैसा उसोग, सदा नंद तै नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उसमाटी, तैसा मृत तैसी भिक काटी, तैसा मान तैसा विमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरता ईसाई जुगत, नानको पुर कही जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाऊ, जित जित कर राख तैसा तिन नाऊ, आपे करन करावन जोग, प्रभावे सोई पुन होग, पसरे आप अंत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रकाश, पार ब्रह्म करता बिना, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल, श्लोक उस्तत करे अनेक जन, अंत न पार अवारु,
नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकारु अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमह उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपिसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कवका विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते कंत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभिगातम निकोर कई कोट पर दर्भ को हिरै कई कोट पर दुख न करह कई कोट माया श्रमाये कई कोट परदेश प्रमाये जित जित लावो तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रसपोगी कई कोट पंखी सर्प उपाये कई कोट पाथर वृक्ष निप जाये कई कोट पवन पानी वैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट शशियर सू नखियतर कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत तार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस काम सातक कई कोट वेद प्राण सिमर तर शास्त्र कई कोट कीर्तन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच सब ते नेरै सब होते दूर नानका बलिप्त रहया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म जीव मरै कई कोट भोजोनी फिरै कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट घालै थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मह चिंत जय जय पाणा तह तह राखी नानक सब किस प्रभ के हाथे कई कोट भय वैरागी राम नाम संग तिन लिवलागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिल्यो प्रभ विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होया सुख प्रसन्न नानक तेजन सदा धन धन कई कोट काणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होय अवतार कई जूत किन्नो विस्तार कई बार पशु पासार सदा सदा एक कंकार कई कोट किन्ने बहुपात प्रभ ते होय ब्रह्मा समाता कांत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवता तुम प्रगास कई कोट तत् के बेती सदा निहार है को नेत्री कई कोट नाम रस पीवै अमर पै सद ही जीवै कई कोट नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह समावे अपने जन को साथ साथ सुमारी नान कोई परमेश्वर के प्यारी श्लोक करण कारण प्रवेक है दूसर नाही कोई नान किस बलिहार न जल थल मही अल सोय अष्टपदी करण करावन करण है जोग जो तिस भावै सोई हो किन मैं ताप तापन हार अंत नहीं किछ पारा वारा हुक्मे धार धर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब में रिहा सुमाई प्रभावे मानु कथ पावे प्रभावे ता पाथर तरावे प्रभावे बिन शास्त्र रखे प्रभावे ता हर गुण पाके प्रभावे ता पत्थर उधारे आप करे अपन विचार है दोनों सिर का आप स्वामी खेले विकसे अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहो मानुख से क्या होया वे जो पावे सोई करावे किसके हाथ हुए था सब किछ ले जो तिस भावे सोई करे अनजान विख्या मैं रचै जी जानता अपना बचै परमे भूला दह जिस्तावे निमक मां चार कुंट फिरे आवे कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक दे जन्ना मिले किन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवास जा की दृष्ट कछु न आवे तिस तत्काल दह जिस प्रगटावे जा को अपनी करे बख्शीशता का लेखा न गण जगदी जी अपन सब तिस की रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवै दिख बढ़ाई इस काबल नाही सहात करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस भावे सोई फुंतियो कबू ऊंच नीच में बसै कबू सोग हर करंग हसै कबू निंद चिंद विहार कबू उपकाश बयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानका मिला बनहार कबू नृत्य करै बपाल कबू सोए रह दिन रात कबू मां क्रोध विकराल कबू सर्व की हो तरवाल कबू होए वह बट राजा कबू पेघार नीच का साजा कबू अब कीरत में आवे कबू भला भला कहावे ज्यों प्रभला कहते हुए ही रह गुर प्रसाद नानक सच कह कबू होए पंडित करे बख्यान कबू मोहन धारी लावे ध्यान
कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधक नु ज्ञान कबहू कीट हस पतंग होए जी अनक जुन पर मैं परमिया नन रूप जो स्वागी दिखावे जो प्रभाव है तिवै निचावे जो तिस पावे सोई होए नानक दूजा वर्ण कोई कबहू साध संगत उपावे सस्थान ते बौर न आवे अंतर होए ज्ञान प्रगासु सुस्थान का नहीं विनाश सुमंत नाम रति करंग सदा बसे पार ब्रह्म कै संग ज्यो जल मैं जले आए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान सलोक सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्व गले अष्टपति जिसके अंतरा जब मानू सो नरक पाती होवत स्वान जो जानै मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को करवंत कहा वै जन्म मरै भोजन प्रभावै धन भूमिका जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक या मुक्त आगै सुख पावै धनवंता हुई कर गरबावै तृण समान कत्संग न जावे बहु लश्कर मान कुपर करे आसु पल पितरता का हुई विनाशु सब त्याव जाने बलवंत किन मैं हुए जाए पसमंत किसे न बदया अहंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जा का मिटे बिमान सो जन नानक दर गए परवान कोट कर्म करे होता रे श्रम पावे सगले बिरथारे अनिक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार अनिक जतन करा तुमने द्रवय अर्थर गह को कैसे गवै आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व गिरेंजा का मन होए कौ नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए जब ए जाने मैं किच करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लगने चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे सहस कटे लग कूटता वै तृप्त न आवै माया पाछै पावे अनिक भोग बिख्या के करे न तृप्ता वै खप कमरे बिना संतोख नहीं कूरा जय सुपन मनोरथ वृथे सबका जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नान कर जाप करण करावन करण हार इसके हाथ का विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप रब सोए जो किच गिनु सो अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बूझे देखे करे विवेका पहे का पह अनेक मरण बिन से आवे न जाए नान सद ही रहा समाए आप उपदेश समझे आप आपे रचिया सब कै साथ आप किनु अपन विस्तार सब कछ उसका करने हार उसते भिन कहो किच होए तान तनंतर एक कै सोए अपने चलता करने हार कौतक करे रंग आपार मन में अमन अपने माही नान कीमत कह न जाए सत सत सत परम स्वामी गुरु प्रसाद किने वकियानी सच सच सत सब की ना कोट मदे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी काट काट सुनी श्रवण वकियानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्री श्लोक संत शरण जो जन परे सो जन उतरनहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपति संत कह दुखन आरजा कटै संत कह दुखन जमते नहीं छुटै संत कह दुखन सुख सब जाए संत कह दुखन नरक में पाए संत कह दुखन मत होए मलीन संत कह दुखन शोभा तेहीन संत के हते को रखै न कोई संत कह दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै सन नानक संत संग निंदक पीतर है संत के दुखन ते मुख पवै संतन कह दुखन काग ज्यों लवै संतन कह दुखन सर्प जोन पाए संत कह दुखन त्रिगत जोन किलमाए संतन कह दुखन तृष्णा में जले संत कह दुखन सब को चले संत कह दुखन ते सब जाए संत कह दुखन नीच निचाए संत दुखी का था को नाहे नान संत पावे तो भीगत पाए संत का निंदक मात ताए संत का निंदक टिक न पाए संत का निंदक महत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखिया अर्दीन संत की निंदक को सर्व रोग संत की निंदक को सदा विजोग संत की निंदा दुख में दुख नान संत पावे तो उसका भी हो मोह संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसै का नहीं मित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी माँ अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्मै मरे संत के दुख ना सुख ते टरै
संत के दुखी को ना ही ठाऊ नान संत पावे ता ले मिलाए संत का दुखी अद बीज ते टूटे संत का दुखी कित काज न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान परमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते थोता ज्यो सास बिना मृतक की लोता संत के दुखी की जड़ किच नाही अपन बीजा पे ही खाही संत के दुखी कवर न रखन हारू नान संत पावे ता ले उभारू संत का दुखियों बिल लाई ज्यो जल विहून मछली तड़फड़ाई संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यो पाव किंदर नहीं त्रापै संत का दुखी छुटे केला ज्यो बुआड़ तिलके तुमाहि दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सदमिथिया कहत किरत निंदक का धुर ही पया नानक जो पावे सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी न मरे न जीवाई है संत के दुखी की पूजै न आसा संत का दुखी उचले निराशा संत का दुख न तृष्टै कोई जैसा भावे तैसा कोई होए पया किरत न मिटे कोई नानक जाने सच्चा सोई सब घट तिसके ओ करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उसत करो दिन रात किसै त्यावो सास गिरा सब कछु वरतै तिसका किया जैसा करी तैसा पोथिया अपना खिलाफ करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनु कृपा करे सब नाम दे बड़ भागी नानक जन से श्लोक तजो से आनक सुरजन हो सिमरो हर हर राय एकास हर मन रखो नानक दुख भरम पौ जाय अष्टपदी मानु की टेक वृति सब जान देवन को एक कै भगवान जिसके दिए रह अघाए बौन तृष्णा लग गए आए बारह रखे कुआप मानु कह किचना ही हाथ जिसका हुक्म सुख होए तिसका नाम रखंट परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन लागे कोई मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसनामृत पीयु सदा सुहेला कर लह जीव नानो पेख ठाकुर का रंगो सासंग बिनसै सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटै पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानकु जिल मत्था बड़भागी ते जन जगवाहि सदा सुधार के गुण गाहि राम नाम जो करै विचार चेतन मंत गणि संसार मन तन मुख बोलै हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने तुत की सोजी जाने नाम संग जिसका मन माने नानक तिने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद अपन आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै सास संग हर हर जिस कहे तो सर्व रोग त्योहर जन रह तो अंदिन कीर्तन केवल वकियान गृष्ट में सोई निर्वाण एक ऊपर जिचन की आशा तिसकी कटी जम की फासा पार ब्रह्म की जिसमन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर प्रमन चित आवे सो संत सहेला नहीं डुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक को किस ते डरे जैसा सा तैसा दृष्ट आया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद सब बुझिया जब देखो तब सब किच मूल नानक सो सुखम सोई स्थूल न के जन्म न किच मरे अपन चलता भी करे आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट आपे आप सगुण में अपन जूत रस्ता पुताप अवनासी नाही किच कांड तारन तारे हो ब्रह्मांड अलक पे पुरख प्रताप अब जपाए त नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सब संसार उदरै तिन मंत प्रभु के सेवक सगल उदाहरण प्रभु के सेवक दुख विसारण आपे मेले कृपाल गुरु का सब जप है निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बड़ भागे नाम जपत पावे विश्राम तिन पुरख उत्तम करमान नानक तिन पुरख उत्तम करमान जो किच करे सुप्रभ कह रंग सदा सदा बसै हर संग सह सुभाय हुए सो हुए करने हर पछाने सोए जैसा प्रभु का किया जन मीट लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे तिस माय समायो सुख निदान उनु बने आया उसको आप दिनो मानान प्रभु जनिक को जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभु वीरता जानन हार जा कै सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गानन हार गोपाल सर्व जी आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते वीरता कोई ना रे मन मेरे सदा हर जाप अवनासी प्रभु आपे आप अपन किया कछु न होए जिसो प्राणी लो चै कोए तिस बिना ही तेरा किछ काम गत नानक जपे कर नाम रूप वंतो ना ही मोह है प्रभु की जो सगल कट सो है तनवंता हुए क्या को गर्भ है जा सब किस जिसका दिया दर वह सूरा जी को कहा वह प्रभु की कला बिना कहता वह जे को हुए वह दातार तिस दिन हार जाने गावार जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग नानक सूजन सदा अरोग
जो मंदिर को थम है थम मन त्यो गुरु का शुद्ध मन है सम मन जो पाखा नाव चढ़त रह प्राणी गुरु चल लगत निष्ठ रह जो अंधकार दीपक प्रगा सु गुरु दर्शन देख मन होए बेगा जो माव ध्यान में मार्ग पावे तिन साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बांचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर काहे बिल लाइये पूर्व लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख प्रभु देवन हार अवर त्याग तू तिशा चितार जो कछ करे सोई सुख मान भूला काहे फिर जान कौन बसाई तेरे संग लपट रस लोभी बितंग राम नाम जब हृदय माहे नानक पत छेती घर जाहे जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ता जब मान ले हो मन मोर राम नाम हृदय में तोर लाद के संत संग चाल अवर त्या बिख्या जंजाल धन धन कह सब कोय मुख उजला हरदर गए सोए हे वापार विरला वापार है नानक ताके सद बलिहार है चरण साध की तो इत पी और साधु को अपना जियो साधु की धूर करो स्नान साधु पर जाइये कुर्बान साध सेवा बट भागी पाई है साध संगार कीर्तन गाई है अनिक बेगंते साधु राखे हर गुण गाय अमृत रचा के उठ गई संत दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृत को जीवालनहार भूखे को देवता दार सर्व निदान जाके दृष्टि माही पूर्व लिखे का लहना पाई सबके जिसका करने जोग तिस बिंदु सर हुआ न हो जप जन सदा सदा दिन रहनी सब त्यूच निर्मले करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस दिन आवे हर प्रवचीत भगत भगत सुनिए त्यो लोए जाके हृदय को हुई सच करनी सचता की रहत सच हृदय सतमुख कहत सची दिल सचा आकार सच वर्त सचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग के चित्र गुण ते प्रभ भिन्न जिस हे बुझाए नानका जिस हो वह सो प्रसन्न अष्टपति अविनाशी ब्रह्मन में राख मानु की तू प्रीति आग तिस्ते पर ना ही किच कोई सर निरंतर को सो यापे बिना यापे दाना गैर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शन सा तेरे की चरणी पाओ नानक मन हो नाव मनसा पूर्ण सरना जो जो कृपाया सोई हो हरण परण जा का नेत्र फूर जिसका मंत्र न जाने हो रन ध्रुव मंगल सजा कह सर्व थोक सुनिए करता कह राज में राजयुग में जो गीता मैं तीसर विश्व में भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नान किस गुरु का किनंत न पाया जाकी लीला की मितना ही सगल देवार बगाहे पिता के जन्म के जाने पूत सगल पुरोही अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जन दे जिंदन जास सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्या वैसे त्यो गुण में जा को परमाय जन्म मर फिर वह जाय ऊंच नीच के स्थान जैसा जना वह तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे रंग नाना बिज किनो विस्तार प्रभ विनाशी एक अंकार नाना चलत करे किन माहे पूरे पूर्ण सब ठाई नाना बिद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाऊ जब जब जीवे नान कर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सु भवन नाम के समुद्रे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सूजन गत पाए रूप सत्या का सत स्थान पुरुष सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरुष समाय समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदायी विश्वास सत नानु गुर ते पाई सत वचन साधु उपदेश सत ते तन जानु जा कह हृदय प्रवेश सत नित बुझे जे कोई नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जान अपनी मित गत जिसकी सृष्टो करने हार वर्ण भूत करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया विस्मन विषम भय विस्मा जिन बुझे तसाया स्वाद प्रभु कै रंग राजन रही गुरु कै बचन।

गडाई ताको पिन्ना कहना जाय बूझे बूझ नार विवेक। नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जान संग, प्रभु का सेवक नाम कह रंग, सेवक को प्रपालन हारा, सेवक की राख निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभु धारै, नानक सो सेवक साथ साथ सुमारै, अपने जन का पर्दा ढाकै, अपने सेवक की सर पर राखै, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत राखै, ताकि गत मित कोई न लाखै, प्रभु के सेवक को न पहुंचे, प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दाते प्रगटाया, निकी कीरी मैं कल राखै, भस्म कर लश्कर कोट लाखै, जिसका सास न काटता पोता को रख देकर हाथ, मानुष जतन करत भात, तिसके करत वृथ जात, मारन रखया वरना कोई, सर्व जिया का रखा सोय, काहे सोच करै रे प्राणी, जप नानक प्रबल कविडानी, बारम बार बार प्रभु जपिय, पिय अमृत मंत्र तृपिय, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके च अवरना ही दृष्ट आया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुकर नाम का संग, नाम रजो जन त्रिपताने मंतन नाम, मह नाम समान उठत बैठ सोवत नाम, कौ नानक जिन कह सुत काम, बोलो चाचे बा दिन रात, प्रभ अपने जन की नीदात, करै भगता तुम कह चाये, प्रभ अपने शिव रह समाये, जो हुआ हो सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पहचाने, तिसकी महिमा कौन बखानू, तिसका गुण कह एक न जानू, आठ पै प्रभ से हजूरे, कहु नानक से जन पूरे, मन मेरे तिनकी उठले, मंतन अपना तिंजन देहे, जिंजन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावै, तिसके दर्शन पा मिटावै, वर सियान सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न हो भी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, श्लोक सतगुरु के जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाओ, तिसके संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ अष्टपदी, सतगुरु सिख की करै प्रतपाल, सेवक गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वड भागी हे, सतगुर सिख का हलत फलत सुवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारै, गुर कै गृह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन में सहै, आपस कहो कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन विच सतगुर कह पाव, तिस सेवक के कार्य राज, सेवा करत होए निकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मतले, बीस विश्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर को बल जाओ, सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म, एक आप नहीं कछ पर हूँ, सह सियान पलया ना जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइये, सफल दर्शन पेखत को नीत, पर सत पर चरण गत निर्मल रीत, पेट संग्राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दर गह गवे, सुन कर वचन करन आघानी, मन संतोख आत्म पतियानी, पूरा गुर क्यो जाका मंत्र, अमृत रिष्ट पिख हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भाव है तिस लय मिलाए, जे बाए कुष्ठ अनेक, सतपुर पूर्ण विवेक, काहू बोलना पहुंचत प्राणी, अगम गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई, अनिक भक्त बंधन नित करे, चरण कमल हृदय सिमरै, सद बलिहारी सतगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, एहो हरस पावै जिन को अमृत पीवे, अमृत सो होए, उस पुर का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुण था, साठ पैर हर का नाम ले, सच पदे सेवक को दे, मोह माया कै संग न ले, मन में रखे हर हर एक अंधकार दीप प्रगासी, नानक परमो दुख तैथि नासे, तब तुम आई ठाड वरताई, अनंत पया दुख

नाठे भाई जिन मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे भाव चुका निर्भवे बसे सगुण व्याज मंत्री खै नसे जिसका साथ इन लिया जिसका साथ इन कृपा धारी साध संग जपना मुरारी थित भाई चुके भ्रम गवन सुन नानक हर जसरव निर्गुणा सरगुण पियो ही कला धार जिन सगली मोही अपने चर प्रभाव बनाए अपने कीमत आपे पाए हर बिन तू जाना ही कोए सर्व निरंतर एको सोए उत्पोत रव्या रूप रंग भय प्रगासु साध कै संग रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलिहारी।

जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गावो सा सत मैं त्यावो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करूं प्रभु की नित नीत एक

फिर जाप अष्टपदी। जब कार्य कचना दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर्क सो कहो किसे व्यापत। जब अपन आपा पार ब्रह्म तब मुह का किसोत परम। अपन खेला वर्ती जा नान करने हार न दूजा। जब ओत पर केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी। जब कह रगम पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव सुकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जो तरे तब कवन निडर कवन कत डरे। अपन चलता करने हार नानक ठाकुर रघुम पार। अविनाशी सुख अपनासन तय जन्म मरण कहो कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए। जब अविगत गोचर प्रवेका तब चित्रगुप्त किच पूछ लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर अगाधे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे। अपन आपा पिय चर जा नानक अपन रूप आपिय पर जा। जय निर्मल पुरख।

नानक करते का नहीं सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कलाया पह परवीन, तह बेद कतेब कहा कूचीन। जब अपन आप आपुरता रहे, तो सगन अपसगन कहा विचार है। जय अपन ऊच अपन आप नीरा, तय कौन ठाकुर कौन कही है चीरा। विषमन विषमर

सब परवान, गुर प्रसाद नानक हो जाओ। जो जाने किस सदा सुख हुए, आप मिलाए लई प्रभु सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुहाओ, जन कै संग चित आवै नाओ। आप मुक्त मुक्त

मने अंतर की उतरे चिंद आस नित त्याग उतरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरहू।

आप तरह लोग कह निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, झाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहत वाजय, सुन सुन अंत करे प्रभु गाजय। प्रगटे गोपाल महांत के माथी, नानक उदरे तिन के साथी। शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभाप मिलाए। मिट गए बैर पहे सवरेन, अमृत नाम सा संग लैन। सुप्रसन्न पहे गुरुदेव, पूर्ण हुई सेव की सेव। आल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रवतारी, नानक निभ ही खेप हमारी। प्रभ की उस्तद करहो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सुहूत निदान। सर्व इच्छाता की पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊच पाए स्थान, बहुर न होवे आवन जान। हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रित नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध। विद्या तप योग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सबके मत सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत का बेता, समदर्शी।

जिस मन बसै सुने लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ जीत। जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुलभ देह तत्काल उदारै। निर्मल सोभा अमृतता की बानी, एक नाम मन माहे समानी।

सुखमनि सुखमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

काम है, अकाम है, अते है, अपे है, अजीत है, अपीत है, त्रिमान है, निधान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंद है, अबंध है, निर्भूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नृसीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अभीत है, अभा है, अगा है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयात छंद। नमो सर्व माने समस्ती निधाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगिया नाथे, नरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान पाने, नमो नृत नृते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे, समस्ती स्वरूपे, प्रपंगी प्रमाथे, समस्ती विभूते, कलंकं बिना नेकलंकी स्वरूपे, नमो राज रजवेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगवेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज रजवेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता, अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगवेश्वरं परम जुगते, नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साहसाहं, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तं इष्टनानं, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी, अनूपे अरूपे समस्तो निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा दृढ़कर्ता, अधो उर्ध अर्धं अगम ओग हर्ता, परं परं परमेश्वरं प्रोषपालं, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अशेदी अपेदी अनामं अकामं, समस्तो पराजी समस्त अस्ततहमं, तेरा जोर चाचरी छंद। जले हैं, थले हैं, अपीत हैं, अपे हैं, प्रभु हैं, अजू हैं, आदेश हैं, अपेश हैं, भुजंग प्रयात छंद। अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्व माने समस्ती निधाने, नमस्तवंग निरनाथे, नमस्तवंग प्रमाथे, नमस्तवंग अगंजे, नमस्तवंग अपंजे, नमस्तवंग अकाले, नमस्तवंग अपाले, नमो सर्व देशे, नमो सर्व पेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं, नमो सर्व पीतं, नमो सर्व गयानं, नमो परमतानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व जंत्रं, नमो सर्व कृष्णं, नमो सर्व कृष्णं, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्ये, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी, सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासी, चरपट शांतो अप्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मं अलख कर्मं, सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता, सर्वं पाने सर्वं माने, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं, सर्वं भुगता सर्वं जुगता, सर्वं देवं सर्वं पेवं, सर्वं काले सर्वं पाले, रुआल शांत त्वा प्रसाद, आद रूप अनाद मूरत, अजोन पुरख अपार, सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार, सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल, यत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल, नाम ठाम न जात जाकर, रूप रंग न रेख, आद पुरख उदार मूरत, अजोन आद अशेख, देश और न पेश जाकर, रूप रेख न राग, यत्र तत्र दिशा दिशा हुए फैल्यो अनुराग, नाम काम विहीन पेखत ताम हुन है जाहे, सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान ताहे, एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल आखेल खेलन अंत को फिर एक, देव पेव न जानहि जेह बेद और कतेव, रूप रंग न जात पात सो जानहि कहे जेव, तात मात न जात जाकर, जन्म मरण विहीन चक्र बक्कर फिर चतुर चक, मानई पुर तीन लोक चौदा है के बिखै, जग जाप ही जिह जाप, आद देव अनाद मूरत थापे हो सबै जिह थाप,

पुनीत मूरत पूर्ण पुरुष अपार सर्वस्वरचियो स्वयंभव गुणन पंजनहार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरुष आदेश धर्म काम सो परम रहत अपूत अलख अपेश अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जानही जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत पाकत नेत कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवही वह चित मधुभार छंद त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुपाओ प्रकाश निस दिन अनास आजान बाहो साहान साहौ राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आपा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम आत दूत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ्य अंडंड बाढ़ चाचरी छंद त्वा प्रसाद गोविंदे मोकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र जा दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वरती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्या चतर चक्र दान्या जाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिस आदि स आदर्श आकृष भगवती छंद त्व प्रसाद काथते के आशे जदे सह के अभिज भिस के अगंज करम के अभंज भरम के अभिज लोक के आदित सोक के अवतूत वर्ण के विभूत करण के राजन प्रभा है के धर्म तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अपर्ण के जगत कृति है के शत्रु क्षत्रिय है के ब्रह्म स्वरूप के अनपाओ अनुप के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहीन के एक अधीन के रोजी रजा कह रही मेरे हाक है के पाप बेअब है के गैबुल गैब है के अकबुल गुनाह है के शाहन शाह है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज कर रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काला है के सर्वत्र पाला है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सोख है के सर्वत्र पोखा है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देसा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्या है के सर्वत्र थाप्या है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंकली में के परम फाही में के आकल अला में के साहेब कला में के हुसन अल वजू है तमामुल रजू है हमें सुलसला में सलीकत मुदाम गनीमुल सिकस्त है ग्रीबुल परसुत है बिलंदुल मकान जमीन जमान तमीज उल तमाम रजू अन निधान हरीफ अल अजी में रजाइक यकीन है अनेक उतरंग है अपेद है अपंग है अजीज उल निवाज है गनीम खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्व साज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओ आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबादे अगंजे अगाधे शुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे
त्रिभुगत स्वरूप है, अछेज है, अछूत है, कि नरकं प्रणाश है, कृत्युल प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैवं सदा है, बेभुगत स्वरूप है, परजुगत अनूप है, निरुक्त सदा है, बेभुगत प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, परजुगत अनूप है, चाचरी छंद अपंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अतूत है, अनाश है, उदास है, अतंत है, अबंध है, अपवत है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलेख है, अधिक है, अलेख है, अपेख है, अटा है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपण शांत अप्रसाद, सर्वघंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंहर्ता सर्वंहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राणं सर्वंप्राणं सर्वंकर्मं सर्वंकर्मं सर्वंयुक्ता सर्वंमुक्ता सावलशान्तत्वा प्रसाद। नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बेभूते परमात्म परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बेभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे। न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताता न माता न जाता न पाता न साकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है। भगवती शांत त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमें सो सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसनल चराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी दहेंद है के राजक रहेंद है करीमुल कमाल है के हुस्नल जमाल है गनीमुल खिराज है ग्रीबुल निवाज है हरीफुल शिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाइक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है कि नरकं प्रणास है बहस्तुल निवास है के सर्बुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परम ईश है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनल जमा है अमीकुल इमा है क्रीमुल कमाल है के जोरत जमाल है के अचलं प्रकाश है के अमितो सुबास है के आजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो कसा है के आत्म प्रभा है के अचलं अनंग है के अमितो अपंग है मधुभार शांत अप्रसाद। मुनमन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंजो हरनर प्रपंजो अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हरनर अखंड बरनर अमंड अनुभव अनास मुनमन प्रकाश। गुणगन प्रणाम जलथल मुदाम आनशेज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जलथल अमंड दिस विस अपंड जलथल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित तरतुरास आजान बाहो एक सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशेज गात आजिज न बात अनचंज गात अनरंज बात अनठठ भंडार अनठट अपार अडीठ कर्म अतटीठ कर्म अणब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत त्व प्रसाद। करुणालय है अर्कालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उभारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम्ब्र है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है। अजपा जप है अथपा थप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणीकृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खलकायक है विश्वम्ब्र है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है भाव भंजन है अरिगंजन है रेप तापन है जाप जापन है आकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म वास है जास के जास है भुजंग प्रयात छंद। नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे
नमो राज संग ताम संग शांत रूपे नमो परम ततंग ततंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह करता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादन विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री छंद अजय अलय अपह अभय अबू अजू अनास आकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अढ़ा अनाथे प्रमाथे अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुकर्मंग विभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्त निवासी अजायब विभूते गजायब गनिमे हरियं करियं क्रीमल रहीमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते सुयंभव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरियो घर जोग जति के सूर सुरारदन सुध सुधा देख संत समूह अनेक मत्ती के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखिय तो प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हुते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग तो कुरंग से कूदत पाउन के गौन कौ जात निवारे भारी पूजान के भूप भली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे एते भय तो कहां भय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिशान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बेन अंत कौ अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बसेखाय वेद पुराण कतेब पुराण जमीन जमान सबान के पेखाय पौन आहार जति जात तार सबै सुविचार हजार क देखाय श्री भगवान भजे बेन भूपत एक रति बेन एक ना लेखाय सुध सिपा दुरंत दुबा सुसाज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन मैं कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीर मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरयार अब चारे सार की तार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सुबातन ही चकचार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचुक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे उन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इस नानक जादिक दान अनेक सुअंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सची पत अंत फसे जम फास भरेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पाग ते नर फेर न देह तरेंगे कहां पयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो बख ध्यान लगायो नाहत फिरियो लिए सात समुंद्रन लोक गयो प्रलोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठो कै ऐसे ही ऐसे सो बै सो बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो
काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लेंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर आवाची दिशा मैं काहू पशा को सीस निवायो को बुतान को पूजत है पास को मिरतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावाओ आप हाथ दय मोहे बचावाओ सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दय करिया है सब बैरन को आज संग्रिया है पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम है शाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दय मुझे उबरिया है मरण काल का त्रास निवरिया है हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जो करे हो रक्षा राख ले हो मोहे राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सेव कियो बेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जचन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो घाट घाट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना है घाट घाट के पट पट की जाना जब उद करक करा करतारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब अकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह पर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारा आप अपनी बूझ उचारा तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कृपाहन अनुमानत महामूड काश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीन तनह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दोष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दोष्ट दुखत हवाय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार ते आय हाय ताके काल निकट न है आय हाय रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताके पाप तनक मैं हर हो रिद सिद कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वाय सकै ना कोई
एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांस ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारू कहा दारद दुष्ट दुख ते रहा खाड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दै लेहो उबारी सर्ब ठाउर मोहो सहाई दुष्ट दुख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किले बेखो सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शाय करता श्री अस्तु जपे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावे सोई दुख नत सह व्यापत कोई अड़ेलो सुने गुंग जो जाहे सुर सुना पावई सुने मूड चेतलाए चतुरतावई दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहै हो जो जाकी एक बार चौपाई को कहा है चौपाई संबत सत्रह सहस पण जय अर्ध सहस पुन तीन कह जय भाद्रव सुधि अष्टमी रविवारा तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा सोइया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने हो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मानेओ सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जानेओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहेओ सब तुहे बखानेओ दोहरा सगल द्वार कौ शाढ़क कहेओ तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आस गोबिंद दास तुहार सगल द्वार कौ शाड कै गहे तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आस गोबिंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन बजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्द उता गावह हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सुवारणा सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा है घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा है साचा नाम मेरा आधारू सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु बिटहो जिस दियां ए वडियाइया कहे नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वासो कीते काल कंटु को मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कहो से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे साची लिवै बिन देहिन माणी लिवै बाजहु क्या करे वेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाही कृपा कर बनवारिया एस नाओ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवै बाजहु क्या करे वेचारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा के लिख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदर आहो जिनका मोह तुटा तिनका शब्द सच्चा है सवारिया कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावै पावै ता सो जन दे जिसनू होर क्या करै वेचारिया
ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਫਿਰੈ ਦਹਿ ਦਿਸੋ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ, ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਤੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕਉ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ, ਗਾਵਹੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣਹੋ ਸੰਤੋ ਹੋ, ਕਥੇ ਹੋ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਠਗਵਲੀ ਪਾਈਆ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟਹੋ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀਂ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਈਐ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੇਰਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣਹੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਆਖੈ ਤਾਂ ਵੇਖੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਦ ਉਪਾਏ, ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰ ਸੁਣ ਆਇਆ। ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੂਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ, ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਾਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਖੰਨੇ ਹੋ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲ ਹੋ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ, ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚਲਾਹੇ ਤਿਵ ਚੱਲੈ ਸੁਆਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾਹੇ ਤਿਵੈ ਚੱਲੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵਹੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਹੇ, ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੀ, ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਸੁਖ ਪਾਵਹੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਹੇ। ਇਹੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ, ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹੋ ਤਿੰਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਧੁਰਹੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਕਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ। ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਬਾਈਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ। ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਕਰਮੀ ਸਹਿਜਨਾ ਉਪਜੈ, ਵਿਣ ਸਹਿਜੈ ਸਹਸਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਸਹਿਸਹਿ ਜੀਉ ਮਲੀਣ ਹੈ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗਹੋ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹ ਸਹਸਾ ਇਵ ਜਾਏ। ਜੀਓ ਹੋ ਮੈਲੇ ਬਾਰਹੋ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਰਹੋ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਇਹ ਤਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਮਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆ। ਵੇਤਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ, ਸੋ ਸੁਣਹੇ ਨਾਹੀਂ ਫਿਰ ਹੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ, ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਰਹੋ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਰਹੋ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਣੀ ਕਮਾਣੀ, ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀਂ। ਮਨ ਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ, ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖੱਟਿਆ।
भले सेवन जारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले। जे को सिख गुरु से ती सनमुख होवै ता सनमुख सिख कोई जियो रहै गुरु नाले। गुर के चरण हिरदय ते आए अंतर आत्मै संभाले आप छड सदा रह परणै गुर बिना अवर न जाणै कोए। कहे नानक सुनो संतो सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सत गुर मुक्त न पावै पावै मुक्त न होर थै कोई। पुछो हो बबे किया जाए अनेक जूनी भरम आवै विण सत गुरु मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सत गुरु शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखो विण सत गुरु मुक्त न पाए। आवो सिख सत गुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावहो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिन कौ नदर कर्म होवै हृदय तिना समाणी पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग जपे हो सारंग पाणी। कहे नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजहो होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आंख वखाणी हर हर नित करहै रसना कहया कछु न जानी। चित जिनका हिर लया माया बोलन पए रवाणी। कहे नानक सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लाका एहो आसमाओ। शब्द सेती मन मिलिया सचै लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ सेव साकत आप उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुकत शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एकस स्यों लेवलाए। कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे ततै सार ना जानी ततै सार ना जानी। गुरु बाजौ ततै सार ना जानी तिहि गुणी संसार भ्रम सुता सुतियां रैण विहाणी। गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वसिया बोलै अमृत बाणी। कहे नानक सो तत पाए जिसनो अन दिन हर लिव लागै जागत रैण विहाणी। माता के उदर मैं प्रतपाल करै सो क्यों मनो विसारियै मनो क्यों विसारियै। ए वरदाता जे अग्न मैं आहार पहुँचावै उसनो क्यों पोहे न सकी जिस नाओ अपनी लिव लावै। अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालीऐ। कहे नानक इवड़दाता सो क्यों मनहु विसारियै। जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया माया अगन सब इको जेही करतै खेल रचाया। जा तिस पाणा ता जम्या परवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया। कहे नानक गुर प्रसादी जिना लेव लागी तिने विचे माया पाया। हर आप अमुल कहै मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसै बिटहो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुरु जी मिलै तिसनो सिर सौंपिया विचों आप जाए। जिस दा जियो तिस मिल रहै हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पल्लै पाए। हर रास मेरी मन बण जारा हर रास मेरी मन बण जारा सतगुरु ते रास जानी। हर हर नित जपे हो जियो लाहा खटे हो दिहाड़ी एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा। कहे नानक हर रास मेरी मन हुआ बण जारा ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत कित्तै जिचर हर रस पल्लै न पाए।
हर रस पाए पल्लै पीए हर रस बहुड़ न तृष्णा लागै आए। एहो हर रस करमी पाई है सतगुर मिलै जिस आए कहे नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग मह आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कहे नानक श्रेष्ठ का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मह आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापए गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापए अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भूगो कहे नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग मैं आए कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मह आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया कहे नानक एहो शरीर परवान होआ जिन सत गुर स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं जोत धरी हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नजरी हर निहालिया एहो विस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नजरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एको है हर बिन अवर न कोई कहे नानक ए नेत्र अंध से सात गुर मिलिया देव दृष्ट होई। ए सरवण हो मेरे हो साचै सुनने नो पठाए साचै सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस सुमाणी सच अलख वेडाणी ताकि गत कही ना जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो साचै सुनने नो पठाए हर जियो गुफा अंदर राखो कह वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ दुआरे परगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए पावनी इक ना दसवां द्वार दिखाया कह अनेक रूप नाओ नावने दो तिसदा अंत न जाई पाया कह नानक हर प्यार जियो गुफा अंदर राखो कह वाजा पवन वजाया इहो साचा सोहेला साचै कर गावो गावो ता सोहेला कर साचै जिथै सदा सच ते आवहे सचो ते आवै जा तुद पावै गुरमुख जिना बुझावहे इहो सच सबना का खसम है जिस

श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय, अर्जुन हर गोबिंद नाउ सिमरौ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है जस जठै सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, सब थाई होवो जी सहाय। दसाही पातशाहियां दी जागदी जोत, बाणी के बोहेथ चवर ताकत शत्र दे मार।

बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन चाओ भगत एह मन ठहरावै बले उचराग अंधियार में सब काल उधरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सह सेती, मन वजिया वाधाइया, राव रतन परवार परिया, सबद गावणे आईया, सबदो तंगा वो हरी केरा, मन जिनी बसाया, कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया।

कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही करते रह। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मनाए वसया, जिन इच्छा सा पियाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विट्टो हो, जे दिया ए वडियाईया। कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तितकार सपागै कार, सपागै शब्द वाजे कला जित कार, तारिया पंच दूत दवस कीते काल कंटक मारिया तुर।

पूरे सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचै धर्म हदूर।

सत्संग जी। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाहिगुरु दिपाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय तिरंकत कुरते अमरदास रामदास से हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय से सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया कारण उन्होंने आवैता है सब ताई हुए सहाय दसवें पाठ क्या गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ताई हुए सहाय दसा पाठी ने

मन मेरिया अंतर तेरे निदान है, बाहर वस न पाल। जो भावै सो पुंच तू, गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे, अंतर हर नाम सखाई। मनमुख अंदुल

तू बाहर वस्त न पाल, मन मेरे आप जन्म पदार्थ पाए कै, एक सच लगे वापारा सतगुर सेवन आपना, अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा, हर नाम प्यारा नामे नौ निद पाई, मनमुख माया मोह व्यापे दुख संतापे दूजे पत गवाई, हौ मैं मार सच शब्द समाणे सच रते अधिकाई, नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई, मन मेरे सतगुर सेवन अपना से जन वडभागी राम, जो मन मार है अपना से पुरख बैरागी राम, से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया, मत निचल अत गूढ़ी गुरमुख सहजे नाम वखाणिया, एक कामन हितकारी माया मोह प्यारी, मनमुख सोए रहे अभागे नानक सहजे सेव है गुर अपना से पूरे वड भागे, वड हंस महला तीजा रतन पदार्थ बन जी है सतगुरु दिया बुझाई राम, लाहा लाभ हर भगत है गुण मह गुणी समाई राम, गुण मह गुणी समाए जिस आप बुझाए, लाहा भगत सह सारे बिन भगति सुख ना होई, दूजे पत खोई गुरमत नाम अधारे, वखर नाम सदा लाभ है जिसनो एत वापार लाए, रतन पदार्थ बन जी है जा सतगुरु दे बुझाए, माया मूह सब दुख है खोटा इहु वापारा राम, कूड़ बोल बिख खावनी बहुवदै विकारा राम, बहुवदै विकारा सहसा इहु संसारा बिन नावै पत खोई, पड़ पड़, पड़

सब दुख है, खोटा इहु वापारा, खोटे करे सब परखियन, तित सच्चे कै दरबारा राम, खोटे दरगह सुटियन।

अतमूल अपारा राम, अतमूल अपारा सचवा पारा, सचवा पार लगे वडभागी, अंतर बाहर भगती राते, सच नाम लिव लागी, नदर करे।

आवण जान दुख पाई। बिख का कीड़ा बिख स्यों लागा, बिस्टा माहे समाई। जो तुर लिखिया सोए कमावै, कोई न मिटन हारा। नानक नाम रते तेरे।

गुरमुख मिले वड्याई। साचै रंग राती सहजी माती, सहजी रही समाई। सच्चा मन पाया सच वसाया, शब्द रते अंत नबेरा। नानक नाम रते से सच समाणे, बाहुर न पवजल फेरा। माया मोह

जत सत संयम कर्म कमावै बिन गुरगत नहीं पाई। नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवै हर सरनाई। जो हर मत देश

नाम जप हर हर नाम कमल परगासे हर नाम नवंग निद पाई। हो मैं रोग गया दुख लाथा हर सहज समाद लगाई। हर नाम वडाई सतगुर ते पाई सुख सतगुर दे।

सेवक भाए मिले वडभागी जिन गुर चरणी मन लागा कहो नानक हर आप मिलाए मिल सतगुर पुरख सुख होई गुर जेवड़ दाता मैं अवर न कोई वडहंस महला चौथा हों गुर बिन करी निमानी राम जग जीवन।

जिस कारण हो ढूंढ टुड़ेंदी सो सज्जन हर घर पाया। एक दृष्ट हर एकू जाता हर आत्म राम पछाणी। हौ गुरबिन हौ गुरबिन खरी निमाणी। जिना सतगुर जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मिलाए राम। तिन चरण सरीव है हम लाग है तिन कै पाए राम। हर हर चरण सरीव है तिनके जिन सतगुर पुरख प्रभ।

पे पुरख निरंजन सोई। वडहंस महल्ला चौथा। हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम। तिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम। गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर विनाशे। सतगुर सेव परम पद पाया, हर जपया सास गिरासे। जिन कौ हर प्रभ कृपा धारी, ते सतगुर सेवा लाया। हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण।

कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता राम। हम पूछ है हम पूछ है सतगुर पास हर बाता राम। सतगुर पास हर बात पूछ है जिन नाम पदार्थ पाया। पाए लगह नित कर है बिनंती गुर सतगुर पंथ बताया। सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर हर नाम हर राता। हर कृपा कर गुर सतगुर मेल सुखदाता। सुन गुरमुख नाम सब बिन से हो मैं पापा राम। जप हर हर नाम लथे अड़े जगता पाराम। हर हर नाम जिनी आराध्या तिनके दुख पाप निवारे। सतगुर ज्ञान खड़ग हथ दीना जम कंकर मार बिदारे। हर प्रभु कृपा धारी।

जप हर हर जप हर हर नाम मेरे मन भया मेरे मन भाया राम मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया अरोगत भये शरीरा अन दिन सहज समाध हर लागी हर जपिया गहर गंभीरा जात अजात नाम जिन त्याया इन परम पदार्थ पाया जप हर हर नाम मेरे मन पाया हर तारहु कृपा कर कृपा लेहु हर तारहु कृपा कर कृपा लेहु।

तू दुख भंजन सर्व सुखदाता, हम पाथर तरे तराया, सतगुरु भेट राम रस पाया, जन नानक दाब उदारे, हर धारहु हर धारहु कृपा, कर कृपा लिहु उबारे राम।

सखाई, जन नानक राम उपाइया, देह पावो जीन बुझ चंगा राम, चढ़ लंगा जी बिखम प्यंगा राम, बिखम प्यंगा अंत तरंगा, गुरमुख पार लंघाए, हर गोहित चढ़ बड भागी लंघै, गुर खेवट शब्द तराए, अन दिन हर रंग हर गुण गावै, हर रंगी हर रंगा, जन नानक निर्वाण पद पाया, हर उत्तम हर पद चंगा, कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान।

मन जिनै गुरमुख जीतिया, अकड़ू कढ़ावै शब्द पावै, अप्यो हर रस पीतिया। सुन श्रवण बाणी गुर बखाणी, हर रंग तुरी

जित हर प्रभ जापै सा धन धन तुखाई आराम। जित हर प्रभ जापै सा धन सा बासै तुर पाया किरत जुड़ंदा। चढ़ देहड़ घोड़ी बिखम लंघाई मिल गुरमुख परमानंदा। हर हर काज रचाया पूरै मिल संत जना जंज आई। जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना।

जड़ हर हर नाम रतन नाराम, जड़ नाम रतन गोविंद पाया, हर मिले हर गुण सुख घने, गुर शब्द पाया हर नाम ते आया, वडभागी हर रंग हर बने, हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नवतन हर नव रंगिया, नानक वखाणे नाम जाने, हर नाम हर प्रभ मंगिया, कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम, मन मैगल गुर शब्द वस आया राम, मन वसगत आया परम पद पाया, सा धन कंत प्यारी, अंतर प्रेम लगा हर सेती, कर सो है हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती, हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है, वडभागी हर हर त्याया, देह घोड़ी जी।

कित मुख तुद सा लाही, गुण अवगुण मेरा किछ ना बिचारिया, बख्श लिया खिन माही। नौ नित पाई वजी वाधाई, वाजे

हर रसै अगाई सहज समाई घट घट रमैया जाते से सज्जन संत से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाणे कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कै सद कुरबाणी। सलोक देह अंधारी अंध सुन्नी नाम विहूनिया नानक सफल जनम जय घट उठा सच धनी चंत।

मिल जल जल है खटाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो जो निता प्रति सतगुरु जी की अमृत बाणी दे चल रहे श्री सहज पाठ नाल जुड़दे हो। गुरुदेव जी कृपा करन, पढ़ी सुनी बाणी दा भाव सू संगत नूं सू परिवारां नूं सतगुरु जी प्रदान करन। अगाध बोध बाणी पढ़दे आं, बेअंत बेअंत भुल्लां हो गईआं हन। आप संगत कृपालु सतगुरु बख्शी योग ने जी भुल्लां ना चितार दे, फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

रंग के त्रैगुण ते प्रभु भिन्न, जिसे बुझाए नानका जिस हो वह सो प्रथम परी, अबनासी ब्रह्मन में राग मानु की तू प्रीतिया, जिससे प्रह नाही किस कोई सर्व निरंतर एक सोई, आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गई सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंदु, साध तेरे की चरणी पाऊ नानक मन ए उनरावू, मनसा पूर्ण तरना जोग जो कृपाया सोई होग, हारन परन जाका नित्र फूर जिसका मंत्रण जान होर, आनंद रूप मंगल सद जाक सर्व थोक सुनिया करता कर, राज में राज योग में जोगे तप में तपी सर्गिस्त में पोगे, त्याय त्याय भक्त सुख पाया नान चिस्पुरक का किर अंत ना पाया, जाकी लीला के मत नाही सकल देव हरे हारे अवगाही, पिता का जन्म के जान पोत सगल प्रोही अपने सूत, सुमत ज्ञान त्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से, तय गुण में जाको परमाई जन्म रह फिर आवे जाय।

0: सुसेवक साथ साथ सुमारे अपने जन का पर्दा टाक अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रख ताकि गतबिंद कोई ना लाक प्रभु के सेवक को ना पहुंचे प्रभु के सेवक ऊंच थे ऊंचे जो प्रभु अपने सेवा लाया नानक सो सेवक दैन जिस प्रगटाया निके की री मैं कल रख पसम कर लश्कर कूट लाख जिसका साच न काटती आप ताको राकत दे ग्रहात मानस जतन करत वो बात जिसके करता बिरथे जात मारन राखे वरना कोए सर्व जिया का राका सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक पर अलक विराणी बारंग बार बार पर जपिया पी अमृत मंत्र रपिया नाम रतन जिन गुरमुख पाया जिसके चवर ना ही दिष्टाया नाम तन नाम और रूपरंग नाम सुख हर नाम का संग नाम रस जो जिन तृप्ताने मंत्र नाम है नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सदकाम बोलो जस जे बाज रात प्रभ अपना जन की नी रात क्रह भगत आत्म के चाई प्रभ अपने सो रह समाई जो होवा होवत सो जान प्रभ अपने का हुक्म पहचान जिसकी महिमा कौन बकानू जिसका गुण का एक न जानू आठ पहर प्रभ स हजूरे कहो नानक सही जन पूरे मन मेरे तिन की ओट लहे मंत्र अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता जिसके शरण सर्व सुख पावे जिसका दर्श सब पाप मिटावे अवर सियान सगली छाड़ जिस जन के तो सेवा लागू आवन जानना हो भी तेरा नानक तिथ जन के पूजो सद पैरा सलो सतपुरक जिन जानिया सतगुरु तिसका नाओ तिसका संग सिख उदर नानक हर गुण गावि सतगुर सिक्खी क्रह प्रतपाल सेवक को गुरु सदा सिक्खी के गुरु दुरमत मलही रह गुरु पत्नी हर नाम उतर सतगुरु सिक्के बंधन काट गुरु का सिख विकार ते हट सतगुरु सिखो नाम तंदे गुरु का सिख बड़भागी है सतगुरु सिक्का हरत पलत सवार नानक सतगुरु सिखो जी नाल संवार गुरु के ग्रह सेवक जोर है गुरु की आज्ञा मन में साहब आपस को कर कचना जनावे हर हर नाम हृदय सदियावे मन बेचे सतगुरु के पास जिस सेवक के कार्य राज सेवा करत हुए ने कामे जिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुरु के मतले बीस विश्वे गुरु का मन मान सो सेवक परमेश्वर के गत जाना सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुरु को बल जाऊ धर्म निदान जिये का दाता आठ पहर बार ब्रह्म रंगाता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक है आप नहीं कच
1: अरे सारी।

कौन गत हुए है तेरी। तीजा शब्द है जी बैराड़ी राग दा, संत हमने हर जैसा गायो। बड़ा सौखा तो छोटा शब्द है, अगे मैं जान के तो आप दस दें, अगला नहीं तो बोलनी क्योंकि समा लवागा। फिर तो चौथा है जी माली गौड़ा का, सब है घट आम बोले ओ से, जे समा होया तो बसंत की राग का कीर्तन करे, नहीं तो फिर इतनी समाप्ति कर लेंगे। आओ आपां नूं परसों 8:00 कुछ मिनट तक, 2-4 मिनट तक कीर्तन सरवण करिए जी, सूजी बख्शा रहिए। तो बाकियों नूं बेनती है कल नूं एक कीर्तन दरबार राग दरबार 10:30 कह लो, 10:30 तो शुरू हो जाना, 2 बजे तक आप जी भी आके जरूर गुरु दी बख्शा लो, बैठ के सरवण करो कीर्तन राग अनुसार। आओ हुण कीर्तन सरवण करिए जी। भाई साहब भाई इनकार सिंह जी, परसों वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की

प्यारी साध संगत जीओ, सुपाग परी जोड़ी ने बड़े ही प्यार दे नाल सतगुरां दे दुआले चार परिक्रमा करके जिंदगी भर एक दूसरे नाल साथ निभाउण दा प्रण कीता है। सतगुरु जी कृपा करन, बख्शिश करन, जोड़ी दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखण, दोनां बच्चियां दी अते दोनां परिवारां दी आपस विच बण आवे। सतगुरु चढ़दियां कलां बख्शिश करन, बच्चियां दी झोली विच सतगुरु जी गृहस्थ जीवन दे सारे सुख पा के नवाजना करन। आनंद कारजां दी मर्यादा दे अनुसार दो शब्द होर गायन करके 5-7 मिनट विच आप जी पासों खिमां दे जाच कहवांगे जी। प्यार सहित आओ सारी संगत मिल करके इन्हां शब्दां दा गायन करिए। व्याह होआ मेरे बाबला, गुरमुखे हर पाया, अग्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान प्रचंड बुलाया।